0: गोपिनी कालिनी का किना छैन सारी छोरी छैन लाने को
1: हैन को देखो छैन
0: रुनुमा ने तो मनमनु नगरो आ भनिकन हात जोडी कर
2: एडा कुर्सी ने
0: नाफा गर्दै थिए
3: हजुर हजुर
0: आ शत्रुबाहु नारायण कदम का रुकाउ माथि चढेर
3: हेरे सन समस्या हेर्दै
2: बौछी बोलन हरि
3: हरि
0: यो मुरली
3: हे

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

दर्शन दुखन श्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी रे। मन मंदिर का दीप जला दो, मन मंदिर का दीप जला दो, गद गद वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी रे।

देवरानी मुनिलाय बोला वाने पनी देवर वलम साथमा जेठानी दिलाय बोला वाने पनी बालोला काथमा घास काटनी कटराय सीला के बाटराय सीला घर मेरो डाण गाँव शील के मूर्छा पर भरे अब तिमी पानीला परो तिमलाई दिमी दिमी घाम लागेर गामा

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास पे हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए।

मेरे पिहरा ले नाता समझे पानी नाता समझे पानी मैं समझूला दिन को दिन छत पानी।

0: के गमासी तको तपानी अजुरा को बेची सावनी आइरे चुमा पानी ओरी ओ राजा रानी धानी आई उन संसार की निराईले यो जीवन ऐसा ईशु क्या को चाइना यो घर को पीराईले ओरी ओ उकाली जन को सबले ते ढूंगो गलाऊं दा गल दाईना गरा को मंचे ना बीजे समन दाना ही फल दाईना
1: यो कालो बंद वेला गाऊं ये
2: शुरू करने वेला ची गाइंसा तो
1: शुरू में से बयाना को झूल के गाऊं सीता को तोपनी बात इमरो बैठी चावनी आई रे चुम्मा पनी
2: मेरो लेडी
0: हरे आवानो कांचो ये पाता पाके को खुर्शानी बागमती दाई यो थमाए समझाऊंगी विरसानी ओरी ओ श्रीराम यारों सुना को शैली छाती मायरा उठाक ज्ञानपा मायर सुहाल दरवाजे समल को साइनों पाक ओरी ओ
1: पहला तो चोपड़ गाँव के आज अपनी गाँव की अब किन्होंने उल्मुल्मा अलबिच किंजे